0: और मैं पाचू
1: इटी यूनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनो और रेडियो